एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी

एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी

कहने की बात नहीं है, हर अकीदतमंद जो है दिल की गहराइयों से उनसे अकीदत रखता है, वो ज़रूर करता है। तो आज यहाँ पे प्रोग्राम भी जो है वो मैं खुद भी, हम सब, आप सब जो हैं बड़े बाज़ौक, और ऑब्वियसली आज जो मुहिब्बाने आले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, बहुत दिल गिरफ्ता है। और एक एक पल जो है, एक एक लम्हा जो है, हम उन शुहदाए कराम के गम में शरीक हैं दिलो जान से। और इसका इकरार भी कर लेने से कोई जो है इसमें कोई आर नहीं है, और बल्कि दिल की गहराइयों से आज अगर हम अफसुर्दा हैं, आंसू जारी हो सारी हैं हमारी आँखों से, और हमारे दिल की जो कैफियत है वो अल्लाह जानता है, तो अगर हम ज़बान से भी इकरार करते हैं कि या आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके गम में शरीक हैं, आपके गम से बढ़ के हमें कौन सा गम जो है वो अजीज़ है। और फिर अल्लाह करीम ने के वरफा अनाला का ज़िक्र के, अल्लाह करीम ने जो उनकी जद को, जो उनकी माशाल्लाह आले नबी है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने, वरफा अनाला का ज़िक्र का, आपकी तरफ, आपके लिए आपकी शान जो अल्लाह ताला ने बुलंद कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि उनकी शान अजीम है, वो आली मर्तबत है। और बल्कि ये तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए आज काफ़ी होगा, वरना दरूदो सलाम, और ज़ाहिर ही बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद अल्लाह पाक फरिश्ते पढ़ते, दिन रात पढ़ते, गुम्बदे हज़रा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के मज़ारे अनवर पर जो 70,000 फरिश्ते सुबह सलामी देते, 70,000 शाम को, और जो एक दफ़ा आ जाते दोबारा उनको क़यामत तक आने की बारी नहीं, अल्लाह ताला ने इतना उनका सिलसिला अजीम कर दिया है, कुर्बान जाए, हर वक्त उनके ऊपर तो दुरूद व सलाम हो रहे हैं। और ये हमारे लिए निजात का ज़रिया है, हमारे गुनाहों से ढाल है कि ये दुरूद व सलाम का सहारा ले के आज अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मगफरत तलब करें, और दुनिया और आखरत की कामयाबियाँ। आज इंशाअल्लाह ताला दुआओं का सिलसिला भी इसमें शामिल हाल रहेगा। अभी ब्रेक में कुछ टाइम है, तो आइए हमदे बारी ताला जो हमारे दिल की दुआ है, तो आइए अल्लाह करीम से ये हमदे बारी ताला जो है अपनी दुआएं आगे रख के ये समात फरमाएं।

बेशक बेशक रब्बे कौनैन से हर वक्त हर घड़ी दुआ है, रब्बे दो आलम के लिए ही तो करबला के वो जानिसार जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अल्लाह करीम का जो वहदहु ला शरीक है, जो उसका दीन है, उसको आँच नहीं आने देनी है। और वहदानियत हक का पैगाम जो है उसको जारी व सारी रखना है। वो कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के कलमे को बुलंद रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की वो बेइंतहा खूबसूरत हसीनो जमील जाने, वो नूर का मंबाओ मरकज़, वो आला इखलाक के मालिक, वो खूबसूरतियों के पैकर के जिन्होंने अल्लाह की खातर अपनी अल्लाह के दीन को बचाने के लिए हक की खातर अपनी हक अल्लाह हक सच की खातर अपनी जानों का नजराना दे दिया। मासूम बच्चे करबला में जो बिलकते हुए हैं उनका आज जो है आज यौम अशूरा जुमा मुबारक का दिन, मुकद्दस दिन, आज अल्लाह ताला से ढेरों ढेर दुआएं और सब्र की भी अल्लाह ताला से दुआएं मांगी हैं कि मौला हमें सब्र दे और हक की खातर जिन्होंने कुर्बानी अपनी जानों की दे दी आज उनका जो हक का कलमा, अल्लाह पाक उनके लिए हम भी कुछ उनकी जो है उनकी जो अल्लाह ताला तूने उनको रिफ़तें दे दी, उनके मकाम बुलंद कर दिए, जन्नतों के मालिक बना दिया अल्लाह, तो आज उनके गम का कुछ हम भी इजहार कर लें। तो बस यही है कि आज अल्लाह करीम की वहदानियत को कि वो मौला करीम के जिसने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले पाक से इतने अजीम काम लिए। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीराज थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

मोहतरम सामईन इकराम, ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर आज जो इस्लामी तारीख का एक ऐसा सानिहा जो कोई और कहीं देखने पर नहीं मिलता, ये इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा सानिहा है। और हम आज जो आज का प्रोग्राम कर रहे, सफ़र कर रहे हैं करबला की वादियों में, हम उन शहीदाने करबला और करबला में जो पाक बीबियां हैं उनके साथ दिल की गहराइयों से गम में शरीक होकर वो मंजर कशी जो है कुछ बयान हो रही है यहाँ पर, और दिल बहुत आज़ुर्दा और बहुत ही गमगीन है। अल्लाह से बहुत हौसला मांग के प्रोग्राम कर भी रहे हैं और आप ऐसा ही आपके साथ होगा, सुन रहे होंगे। अल्लाह करीम हम सब पर अपनी रहमतों का साया करे और हमें भी सब्र जमील अता करे, कि सब्र जमील जब आता है तो फिर हम इन वाकियात को आगे बयान करने की, मैं तो कहती हूँ, जरूरत करती हूँ कि वहाँ इस वक्त क़यामत खेज़ मंज़र और खैमों में 3 दिन प्यास। अभी आपको पता है कि ब्राडफोर्ड में जो गर्मी कितनी की पड़ी है, फिर भी हम बिलबिला उठे और वहाँ का टेम्परेचर देखे, तपती सहरा, रेत। अब ये जो शहादतें हो रही हैं और नन्हे अली असगर की शहादत के बाद जो फिर आगे एक मासूम बच्चा बचा, वो भी राह हक में, मौला हुसैन फरमाते कि मौला ये बच्चा ये भी तेरे राह हक में मैंने निसार कर दिया। अल्लाह करीम, अल्लाह कमी वशी माफ़ फरमाए। और फिर आगे प्रोग्राम में फिर हमने ये देखना है, अभी तो जो बड़ा सानिहा है, हज़रत इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम जब अब जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो बीबी सुकैना अलैहिस्सलाम जो अल्लाह करीम से मांगी मौला हुसैन ने, मौला मुझे ऐसी प्यारी बेटी दे के मैं उससे बहुत प्यार करूं और वो मुझसे बड़ा प्यार करे, अल्लाह को भी माफ फरमाए, वो जाने नहीं दे रही है बाबा को अपने। बाबा जो भी जाता है वापस ही नहीं आता है, बाबा कैसे जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। ये मासूम बच्ची का जिक्र करेंगे, मौला हुसैन लाखों दुरूद सलाम उन पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझे दुआ याद आ रही है इस मौके के ऊपर, मौला हुसैन आप को अल्लाह ताला ने इतनी शान दे दी, इतनी शान दे दी, इतनी शान दे दी कि आपसे एक कोई कतरा मांगता है तो दरिया दे देते हैं, आपसे कोई एक कतरा मांगता है तो दरिया दे देते हैं। आपके गम में रोने से, आंसू बहाने से मौला हुसैन आप क्या से क्या बना देते। मैं कुर्बान जाऊँ। अभी नज़र मेरी जा रही है कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर ये बहुत खूबसूरत सा मेरे पास कलाम है, अभी है टाइम तो ब्रेक में भी टाइम है, दिल को ज़रा तसल्ली ढारस हो ये कलाम सुनते हैं, आइए समात फरमाते हैं।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

वो जो बीबी फातिमा के दिल का टुकड़ा, बीबी फातिमा सलामुल्ला जहरा अलैहि सलाम, खातून जन्नत, उनका जिगर पारा, मौला अली अलैहि सलाम का जिगर गोशा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, मैं कुर्बान कुर्बान कुर्बान उन उस हस्ती पर जब गया तो काफ़िरों ने, यजीदियों ने कहा, उन जालिमों ने, कि हुसैन इब्ने अली आ गए हैं मैदान में, हुसैन इब्ने अली, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। आगे कैसे बढ़ूं? मौज़े सामीन इकराम, ये ऐसा वाक़िया होता है कि कुछ अल्फाज अगर मैं यहाँ पे ही अपनी गुफ्तगू में कुछ अल्फाज अगर ज़ुबान से निकल जाते हैं तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि जिनकी हमें परमिशन भी नहीं होती, लेकिन वो क्या होता है कि जब गम में डूबे होते हैं तो फिर अल्फाज निकल जाते हैं। मैं यहीं पे इससे पहले कि कोई फतवा सादर हो तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया हो तो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं हम ऐसे फतवे। इस वक्त तो खुद गम में डूबे हुए हैं, इस वक्त तो होश ही नहीं है कि इमाम आली मुकाम, वो खूबसूरत शहजादा, वो हुसन का शाहकार, वो हक की तस्वीर, वो पैकरे क्या कहते हैं, हुस्न व जमाल, वो जो जब निकले हैं जन्नत के नौजवान, जन्नत के सरदार, बहिश्तों के मालिक, मैं कुर्बान, तो वो उन जालिमों ने कहा कि देखो हुसैन इब्ने अली आ गया है मैदान में, ये तुम एक एक करके जो इसके लिए जा रहे हो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एक एक को खत्म, सारी एक एक करके सारी हमारी फौज खत्म कर देगा, तुम ऐसे मुकाबला नहीं इसका कर सकते। उन जालिमों ने कहा कि चारों तरफ से इसके गिर्द घेरा डालो, चारों तरफ से अंदाजा करो यजीदी फौजियों का, 22,000 से आगे की फौजें, 22,000 से आगे तादाद, चारों तरफ से इमाम अली मुकाम को घेरो, क्योंकि एक एक करके मुकाबला आपको पता है ना जंग के दौरान ऐसे होता था, तो वो तो ये तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये खून किसका है, हैदर कर्रार का, मौला हुसैन आगे जो आ रहा है उसको कर रहे हैं, काट रहे हैं सबको, मौला अली अलैहिस्सलाम का खून पाक है, सबको काट रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो यजीदियों को तो फिक्र पड़ गई कि ये तो हमारी पूरी फौज को खत्म कर देगा, इसको चारों तरफ से घेरो। फिर वो जिस्मे अतहर, वो पाकीजा जिस्म मुबारक, तो जो तीर अंदाजा करें चारों तरफ से बरस रहे हो, वो मैं अपनी ज़बान से क्या आगे बोलूं, आप खुद समझ गए, आपको खुद पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जालिम शिमर मलऊन, उसने देखा कि हुसैन इब्ने अली पे आगे से बवार नहीं हो सकता, ये नहीं हाथ आने वाला, ये तो बड़ा बहादुर शेर है, तो कहा निशानियां तो पता थी मौला हुसैन को, कहा पीछे हट मर्दूद, मुझे अपने रब की नमाज पढ़ने दे, पीछे हट जा मर्दूद, मुझे अपने रब की नमाज पढ़ने दे, सजदे में सर रख के मौला हुसैन आसमान की तरफ, मौला या अल्लाह तू गवार है, मैंने तो अपना सारा घराना तेरे सुपुर्द कर दिया, हक के लिए कुर्बान कर दिया, मैं भी तेरे सजदे में सर रख के। हुसैन कहता है अल्लाह मैं तुझसे खुश हूँ, क्या तू हुसैन से खुश है? तो जब सरे अनवर रखा सजदे में, उस मलऊन ने सरे अनवर जो जिस्म से
تن سے جدا کیا تو کہرام آسمان پر لال سرخ آندھی طوفان ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام خیمے میں جب یہ منظر دیکھا، بیمار جا نہیں سکتے تھے، کربلا کے میدان میں اٹھے، جلدی سے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی حمد و ثنا، یا کریم اللہ، اللہ الرحمن، اللہ الرحمن الرحیم الکریم، نفع کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ کی حمد و ثنا تاکہ دنیا پہ قیامت نہ ٹوٹ پڑے، حمد و ثنا اللہ کے غضب کو روکو۔ اللہ قربان میں جاؤں، وہ ہستیاں جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے ہما تن گوش، اور پھر وہ دیکھو اس مقام کے اوپر انہوں نے ایک بد دعا تک نہیں دی، ان ظالموں کو ایک بد دعا تک نہیں دی۔ آج ہمارا کیا عالم، او اللہ کرے ایک نہیں بد دعا تک دی، بس اللہ کی حمد و ثنا میں لگ گئے، کہرام برپا ہو گیا، حسین ابن علی خیموں سے آواز آ رہی ہے، بیبیوں کی، بچوں کی، بی بی سکینا روتی ہوئی بابا کے سینے پہ سر رو کے رکھ کے رو رہی ہیں، ان ظالموں نے ہمیں یہاں پہ جو ہے کیا کہوں۔ یہ ایک کلام سنتے منقبت آئیے سماعت فرماتے ہیں۔

0: जिसका जिक्र कलाम पाक में है कि याद में मनाया जाता है। यही तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया है जो इस्लाम की बका और इसकी जमानत बना। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिसने साबित किया कि ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। ये मसालिक और फिरका बंदियों की तकसीम का नहीं बल्कि हक के लिए सर उठा के चलने का दर्श देता है। जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह।
1: उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं।
0: कोई सुलेमान, कोई मेसम, कोई अबू ज़र निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो अस्कर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। जोश मली आबादी फरमाते हैं,
2: मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गर्खे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन।
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
0: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
4: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

जुदा किया गया तने मुबारक से और नेज़े की नोक पर जब कुरान सुनाने लगे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, जब उनकी ज़बानी अक़दस से कुरान पाक की तलावत जारी हो गई तो ज़ालिमीनों ने अपने सर पकड़ लिए, खाक डालने लगे सरों में कि ये क्या कर दिया हमने, ये तो हक पर थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर आगे करबला का जो है, यहाँ पे मैं तो इतना ही कहूँगी, हमारी अकीदत का तकाजा तो ये है कि उन पाक मुकद्दस बीबियों को जो है बाहफाजत जो है उनका काफिला जो है अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए शाम की तरफ रवाना किया गया। तो उनके साथ जो मामलात दरपेश आए, हम उनकी इज्जत तकरीम तत्हीर और उनकी पाकीज़गी तहारत के तकाज़ों को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए तो मैं यही कहूँगी कि उनका काफ़िला जो है वो वापस भेजा गया और ज़ालिमीन ने जो कुछ किया उनके साथ वो पाक बीबियों के उस वक्त मज़ालम की जो इंतहा कर दी कि मेरी ज़बान जो है अब मेरा साथ नहीं दे रही। मुख्तसरन इस गुफ्तगू को समेटते हुए यही कहूँगी कि रास्ते में बड़े बड़े वाक़ियात हुए, वो राहिब जो ईसाई राहब मिला उसका इस्लाम कबूल करना, उसका सरे अनवर को अकीदत से रखना और फिर पाक बीबी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम जो है वो घोड़े पे सरे अनवर जो है आगे आगे तिलावत कर रहा है, पीछे घोड़ों पे पाक बीबियों का जो काफिला जा रहा है, बीबी सैयदा साजिदा बीबी लखते जिगर मौलाए हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार बच्ची मासूम 3 साल की, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कमो बेशी उम्र उनकी, उनकी उम्र मुबारक, रो रही तड़प रही, बाबा जालिम ने, जालिम ने, जालिम जो ऊँट को पकड़ा हुआ है कचावे से उसको बच्ची को यूं करके झंझोड़ा है कि खामोश रहो, तो बच्ची कहीं काफिले से नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, काफिला आगे रवाना हो गया, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। काफिला जब आगे चला गया है तो बीबी वो नीचे बेहोश हो गई हैं, बीबी सकीना। अब काफिला जब आगे जा रहा है तो एक जगह के ऊपर जो है वो सरे अनवर जो है नेज़े की नोक से गिरा है नीचे, तो वो उठा रहे हैं सारे, तो उठ नहीं रहा मौला हुसैन का सरे अनवर, उठ नहीं रहा। उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या माजरा है। खबर पहुंचते पहुंचते हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने कहा अपनी फूफी फूफी जान हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम से कि फूफी जान आप गिने गिनती करें अफराद की कि कौन से अफराद, सबका नाम लेते तो लब्बैक कहते, लब्बैक कहते, जब बीबी सकीना का नाम आया तो उन्होंने लब्बैक नहीं कहा, तो ओहो कहा काफ़िले में कहीं पीछे रह गई, भागी हैं दौड़ी हैं। बीबी ज़ैनब ने कहा भाई ने तो मेरी ड्यूटी लगाई थी। यहाँ पे मैं ये वाक़या बयान कर रही हूँ तो एक बहुत ही जिसे कहें कि एक ऐसा अजीम वाक़या जो मैं जब हज़रत इमाम आली मुकाम जाने लगे मैदान करबला में अपनी शहादत से पहले, तो यहाँ पे हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दो बच्चे औन और मोहम्मद जो हैं उनके छोटे छोटे शहजादे, तो भाई से कहा कि भाई मेरी वालिदा उम्मे जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी माँ जाया, तुम मेरा भाई, मैं कैसे तुम्हें भेज दूँ, पहले मेरे बच्चों को तुम भेजो। कहा बहन कैसी बातें करती, मैं तो अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी,
कि मैंने अपने भाई को आगे कर दिया। कहा, बहन कैसी बातें करती, ये तो बच्चे बहुत मासूम छोटे। नहीं भाई, पहले ये जंग में जाएंगे, पहले ये जामे शहादत नोश फरमाएंगे, फिर आप जाएंगे। ये अगर इनको अल्लाह ताला जामे शहादत देता है तो दे,

ये मेरे बच्चे पहले हाज़र हैं, ओन और मोहम्मद, छोटी उनकी उम्रें। बड़ी मुश्किलों से भाई से ज़िद कर रही बहन, नहीं भाई मैं नहीं, हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा चलो बेटे, तैयार करके बच्चों को भेजा। तो उन दो बच्चों ने, कहते हैं ना ज़ैनब के फूल बाग में भी दो फूल थे महकते, वो भी राहे हक लुटा दिए हैं। तो वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने दो बच्चे जो हैं ओन और मोहम्मद जो है राहे हक में कुर्बान कर दिए। तो फिर मौला हुसैन, जब उनके कुनबे का एक एक बच्चा भी जो है, वो सारे मर्द जो हैं वो अल्लाह की राह में अल्लाह मौला हुसैन ने कुर्बान कर दिए। मैं ये अल्फाज कहते हुए मैं क्या कहूँ, मेरी ज़बान तो साथ नहीं दे रही। दुख है इतना, दुख इतना है कि बस, दुख भी कहता है कि बस मैं बहुत दुख हो गया हूँ कि यकीन करें ये अल्फाज नहीं है, ऐसा ही है। ऐसे लगता है जैसे मेरी हिम्मत में शिकस्त खोरता हो गई। हज़रत इमाम आली मुकाम का फिर मैंने आपको सुनाया। अच्छा, फिर वहाँ पे सरे अनवर जो है वो आपको पता, शहादत का, फिर उसके बाद मासूम वो दो जो नन्हे फूल थे उनके बाद मौला हुसैन की शहादत जब वाक़िया हुई। तो फिर काफ़िला जा रहा है, तो फिर आपको पता यहाँ पे सरे अनवर जो है वो उठ नहीं रहा ज़मीन से, उन्होंने ज़ोर लगा लिया। क्या बात है, क्या मामला है। जब उन्होंने गिनती की तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा नहीं है, तो बागी हैं बीबी ज़ैनब उनकी पीछे काफ़िले में। रात का अंधेरा है छाया हुआ, रात का अंधेरा, दूर गई हैं। जाके जब देखा तो एक खातून कोई बैठी हुई हैं वो गोद में, वो बच्ची को लिया हुआ है, तो बच्ची सोई हुई है। तो बच्ची को जब देखा कि खातून ने बच्ची को उठाया हुआ है, तो पास गई हैं, अंधेरा है छाया हुआ, फरमाया ऐ पाक बीबी तू कौन है। उन्होंने अपना प्यारा खूबसूरत चेहरा अनवर ऊपर को उठाया, सर अकदस, फरमाया ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मैं कुर्बान जा, मैं तेरी माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, उनसे लिया, ये अल्लाह के राज नियाज, अल्लाह की कुदरत, बच्ची को लिया बीबी सकीना को, तो वो सो गई हैं रोते रोते, तो काफ़िले में वापस आके मिली। ऐसे बेशुमार वाक़ियात फिर वाक़िया हुए। तो बीबियाँ जो हैं जो वापस वहाँ पे हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबात जो हैं मौला अली की ज़बान है, वो जो मौला अली की ज़बान में फिर जो उनके खुतबात, उनका भी अभी मुख्तसरन बयान करूँगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फिर टाइम भी ख़त्म होता है। तो घरों में भी इंशाल्लाह ताला उनके दुरूद सलाम की जिक्र अज़कार करें, जुमा मुबारक इंशाल्लाह ताला जुमा करीम पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला के हजूर ढेरों ढेर दुआएं प्रोग्राम के आखिर में दुआएँ करते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हजूर। तो इससे पहले ये सलाम मेरे सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करते हैं।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतरामे मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने। बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

जी मोहतरम सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 14:13 AM पर जुमा करीम, और वो जुमा करीम जो मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा का आज दिन है और जुमा करीम है, इसकी नस्बत से आपके लिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है हमारी वेबसाइट ब्रॉडफर्ड एशियन रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। आप स्मार्टफोन में हमारा आप डाउनलोड करके भी हमारी नशियात समात फरमा सकते हैं। बिल्कुल मोज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आयशा अख्तर के संग आज का ये प्रोग्राम जो है आपने सुना, और यकीन करें कि जो सानिहाई करबला इमाम आली मुकाम के जो शहादत के बाद के वाक़ियात हैं, मैं बहुत मुख्तसरन ये बयान कर रही हूँ और किए भी हैं, तो इस वक्त भी ये बस प्रोग्राम का लास्ट दौरानिया जो है चल रहा है, इसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। तो हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब मैं ये वाक़या बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जो इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि उनको बयान किया जाए, जिनकी वफ़ादारी का सबूत जो है, जो हक़े वफ़ादारी जिन्होंने निभाया हज़रत अब्बास सलामुल्लाह अलैह, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है वो करबला में, इनके इतनी तवील फिर ये डिटेल्स हैं, वो सारी आप ख़ुद भी स्टडी कर सकते हैं, और पता भी है आपको कि मैं एक मुख्तसर वाक़या बयान करना चाहती हूँ कि हज़रत सकीना बीबी सकीना अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रही हैं कि चाचा पानी लेके आए, अपने चाचा अब्बास से जब कहती हैं तो वो जब आपको पता है कि वो वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, क्या तो सारी तरफ से हर तरफ नहरे फुरात का जो था घेराव किया गया था, नहरे फुरात उबल रही थी कि मैं प्यास से शहजादों शहजादियों को सैराब करूं, लेकिन अब ये तो एक इम्तिहान था अल्लाह पाक का, वहाँ पे आजमाइश है उनके ऊपर, और आज तक जो है नहरे फुरात का पानी जो है वो कैसे ठाटे मार रहा है। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ना, ये बहुत एक ऐसी तवील दास्तान है कि जिसके एक एक बाब को खोलें तो पूरा पूरा बाब जो है वो एक तफसील तलब बाब है। तो ज़ालिमों ने पहले एक बाजू काटा मौला अब्बास का, फिर उन्होंने मशकीज़ा अपने मुंह में लिया तो दूसरे बाजू में ले लिया, दूसरे को भी काट दिया तो मुंह में उन्होंने मशकीज़ा उठाया तो उन्होंने मशकीज़े के अंदर तो वो सारा पानी जो है बह गया। लेकिन ये दास्तान जो करबला की है ये बताती है कि हक़े वफ़ादारी जो है हर एक फ़र्द ने निभाया, और मासूम अली असगर की कुर्बानी तक जो है वो वहाँ पर हुई, 6 महीने का बच्चा, बड़े हौसले और अपनी हिम्मत को जमा करके ये जो है वाकया करबला जो है बयान किया जाता है, और मैं बयान कर रही हूँ इस वक्त। आप यकीन करें तो यहाँ से ये बात तो सच है ना कि उनकी यजीद की फौज, यजीद सोचता था समझता था कि ये ताकत ही सब कुछ है, लेकिन हज़रत इमाम आली हुसैन इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैं कुर्बान जाऊँ उनके ऊपर के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि ताकत जो है वो हक नहीं है, हक जो है वो ताकत है, और यही ताकत जो है ये करबला का जो सानिहा करबला में है, इस ताकत को आने वाली नस्लों तक जो है वो फैला दिया गया। आज क्या है, हर जगह लब्बैक या हुसैन की आवाज़ क्या बता रही है कि हक
ताकत है। आज अगर आपने ताकत देखनी है तो हक की ताकत हर जगह आज आप खुद भी जानते, सिर्फ उम्मत मुसलमान नहीं, हर कौम हर तबका के अफराद उनसे अकीदत रखते हैं, उनके नज़र न्याज की जाती है, उनकी अकीदतों में कोई फ़रोग दकी का फ़रोग जाश्त नहीं हो रही, और जो समा है बंदा आपकी आंखों के सामने है, सब के सामने हक आ गया। तो यही तो हक है जिसने छाना है, जो छा गया, और बातल मिटने को है, मिट चुका है और मिटना ही है उसने। अलावा कमी बेशी माफ़ फरमाए। ये जो है मौज़े सामीन इकराम, गुफ्तगू जो है मैं समझती हूँ कि मैंने तो अशरे अशीर भी बयान नहीं किया कि जितना ये एक तवील एक टॉपिक है, और बहुत से वाक़यात बयान करने को भी दिल कर रहा था लेकिन कमी वक्त की कमी की वजह से भी रुक गई। और मैंने यही हमेशा इस चीज़ पे फोकस्ड रही और हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है। करबला के बाद के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कदम उठाए, जो उनकी हिकमत अमली रही जंग के लिए, जो उनका जो था जज्बाए सादिक जो था वो कैसे गालिब आया, और फिर वो दमिश्क और कूफा की तरफ जो है मदीना शरीफ की तरफ जो काफ़िले रवाना हुए पाक बीबियों के, उनमें फिर हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात जो हैं वो मौला अली का पूरा अक्स हैं, रंग हैं, क्यों ना हो उनकी लखते जिगर हैं, उनकी लाडली शहजादी हैं। तो ख़वातीन के हवाले से के जुर्रतमंदाना इकदाम जो हैं हमारी ख़वातीन इस्लामी हिस्ट्री में, कोई उन्होंने बुजदली नहीं दिखाई, उन्होंने डट कर हालात का मुकाबला किया। तो ये हमारे इस्लाम की शहजादियाँ हैं। और वो कहते हैं ना कि सब्रो इस्तकलाल का पैकर वो नन्नी मासूम हमारी सैयदा सकैना सलामुल्लाह अलैहा, उनका पाकीज़ा किरदार, हर हर बच्चे का और तो और देखो वो नन्ना सा मासूम सा अली असगर, वो दिलों का प्यारा, वो जान का टोटा, वो जान का टुकड़ा, वो जिगर गोशाए बतूल, वो ऐसा फूल गुलाब का कि वो फूल हर फूल, वो फूल अलहदा ही फूल, खूबसूरत तरीन फूल, मैं गुलाब का फूल के क्या कहूँ कि उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से फूटने वाले वो फूल, वो तो जन्नत का फूल, जन्नत की हस्ती, अनमोल हीरे, अनमोल लाल जो है दे दिए मौला हुसैन ने करबला की तपती रेत पर। तो उनका जो पाकीज़ा किरदार, उनकी हमने सुन्नत पाक देखनी है कि किस लिए उन्होंने ये सारा सफ़र जो है तय किया। आज खुदारा उम्मत मुसलमान से बिलखसूस अपने समेत ये दुआ है कि या करीम अल्लाह हमें वो जज्बाए हुसैनी अता कर दे। और एक देखना है, हमने खुद इंडिविजुअली देखना है कि हमारा जो पाकीज़ा हमारी हिस्ट्री कितनी पाकीज़ा और कितनी वो बहादुरों की है कि आज भी हम में वो जज्बे हैं कि जो उन्होंने वफादारी और जानिसारी के दिए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की। अपने कातलीन को भी उन्होंने खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, ये भी आपको पता है, कल भी मैंने वाकया बयान किया था, एक नहीं प्याला पिलाया, दो तीन, जब तक वो सैराब नहीं हो गया तो वो आपको पता है कि उसके पीछे पीछे मुख्तार सख्फी की फौजें लगी हुई थी, ये जो है शिमर मलून के पीछे, तो फिर वो बचता बचाता खैमे तक, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए कि ये नाम जो उनके
शहादत के जो थे वो इब्ने, यही था मलून शिमर या कोई इनसे मिलता जुलता नाम। तो वो जब खैमे में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पहुंचाए तो उन्होंने फिर न सिर्फ एक प्याला, उसे दो तीन प्याले पिला के सरा। उसने कहा कि मरना तो है, फौजियों ने तो मुझे घेर लेना है, जाते जाते इससे मैं पूछ तो लूँ कि ये इसका इखलाक कैसा है। तो उन्होंने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, उसने कहा तुमने मुझे पहचाना नहीं, फरमाया तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ ज़ालिम, मेरे ख़ानदान पर पानी बंद करने वाला 3 दिन तक, और फिर मेरे ख़ानदान, मेरे कुनबे को, मेरे बाबा को शहीद करने वाला, और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो ये फिर उसने कहा फिर पानी क्यों पिलाया तुमने, उन्होंने कहा कि उस वक्त हम थे पानी के तलबगार, तुमने पानी बंद करके तुमने अपना ज़र्फ दिखाया, तो ये तुम हमारे पास आए तो प्यासे थे तो हमने तुम्हें पानी पिला के हमने अपना ज़र्फ दिखा दिया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। तारीख़ के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं इनके लिए, शहजादों ने वो कि हमारे पास तो जो भी आता है, हम तो दरे अकदस से, दरे दौलत से तो कोई खाली नहीं जाता है। तो यही है मौज़ा सामईन इकराम के एक ऐसा सानिहा के दिलों को फिर हमने जो है उनके पाकीज़ा किरदार से तहारत देनी है, उनका पाकीज़ा किरदार, उनकी पाकीज़ा अदाएँ, पाकीज़ा सुन्नतें अपनाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ज़रूरतमंदों की कैसे खैरात, और हक के लिए कैसे खड़े हो गए, हक के लिए वो प्यारी जानें जो है कुर्बान कर दी। आज हमने खुद अपने आप में इंडिविजुअली देखना है, सोचना, परखना है अपनी ज़ात को, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि वहाँ वो क्या कर रही हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे। हम सब जो हम जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि मुआशरा, तो मुआशरे के हम खुद भी अफराद होते हैं, हमारे ऊपर ये सब लागू होता है। तो हम सब जो है मुआशरे के अफराद हैं, हम सबको सोचना है, हम सबको जो है सानिहा करबला से एक दर्स लेना है, हम सब ने तहिया करना है, अज़्म मुसम्मम करना है कि अपनी औलादों को बिलखसूस जो है वो हुसैनियत का दर्स दें। और ये नहीं कि हम सिर्फ बस जो है ठीक है, उनकी याद में दिल रोता है, आंसू बहाते हैं, नज़र नियाज होती है, अकीदत है दिल की गहराइयों से, लेकिन ये कि इंसान को इंसान समझें हम आज, इंसानियत के लिए। जो करबला में शहजादा हुसैन ने इंसानियत से रिलेटेड जितनी बुराइयां थी उनका खात्मा कर दिया, नहीं बैत की, क्योंकि इंसानियत की, इंसानियत के की जो खिलाफ हरकतें थीं, आदतें थीं यजीद मलून की, और जो माशरती निज़ाम बिखरा पड़ा था उसके, उसको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, उनके पास बड़ी ऑप्शंस थी, बड़े रास्ते थे, नहीं, हक का रास्ता चुना। और वो हक का रास्ता ही, क्योंकि नाउज़ बिल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर वो ये सारा कुछ एक्सेप्ट करते फिर तो कहना था कि हुसैन इब्ने अली ने ये सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया तो भी हमारे लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाउज़ बिल्ला, नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हक सही जो है उम्मत तक पहुंचना चाहिए, हक का कलमा जो है, और हक ही हक है और बातल बातल है, बस ये उनके अकदाम थे। और ये तो एक नेचुरली चीज़ है भाई कि हम तो और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार, अल्लाह ताला ऐसे ही हमें साबित कदम रखे। अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या करीम अल्लाह, या रहमान रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, तेरी रहमत से, तेरी करम से या अल्लाह ये सफ़र सारा तय किया, या अल्लाह ये सारा तो सा, या अल्लाह पाक तेरी हक को
پہچاننے کے جو راستے تیرے حق پہ چلنے والی ہستیاں، یا اللہ کریم ان کا ذکر خیر کیا ان کے لیے، ہمارے درود و سلام کے نذرانے عقیدت قبول و منظور عطا فرما یا کریم، ان کے صدقے کربلا مولا شریف کے ہر یا کریم اللہ پاکیزہ روح پیاری بالخصوص جو ننے معصوم علی اصغر علیہ السلام کی اعلیٰ پاک شہادت اور پھر حضرت امام علی مقام کی شہادت کا واسطہ، یا اللہ کریم اللہ ہم سب جتنے بھی یہاں پہ بھی یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں سب کی مشکلیں آسان کر، سب کے حالات پر رحم کر، عفو و درگزر کر، سب کی مغفرت ہم سب کی کر دے، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات نازل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو لمبی عمر صحت تندرستی والی عطا فرما، اللہ پاک ہمارے بچوں میں یا اللہ پاک سونیا یہ حسینیت یا اللہ پاک سونیا ایسی ڈال دے یا اللہ کہ جیسا حسینیت کا حق ہے، یہ حق پر قائم رہنے والے، سچ پر قائم رہنے والے ہماری آل اولاد نسلیں قائم کر دیں، ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات لگے اپنے کرم سے فضل سے درگزر فرما کے ان کے معاملات درست فرما، ان کو اللہ پاک اپنی کربلا کی یا اللہ پاک سونیا خیرات جو ہے وہاں بھی تیری رحمتوں کی، یا اللہ تیرے تو کریم ہے، تو نے ان کا اجر جو ہے بہت بڑھا دیا، جنتوں کے کوثر کے وادی ہیں وہ، ہمیں اس در کی خیرات دے دے اللہ، ہماری آل اولاد کو خیرات دے دے، جولیاں بھر دے، ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، کرم کرنے والا ہم مانتے ہیں، بہت کمزور مولا بہت کچھ تجھ سے مانگنا چاہتے، خیر کا اور مغفرت کا مانگنا چاہتے، مغفرت فرما دے ہماری مولا اپنے کرم سے فضل سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید مجید، اپنی اولاد کے لیے آپ سب بھی مانگے، سامعین اکرام ہم بھی مانگتے ہیں، کریم سونیا یا کریم اللہ یا اللہ سونیا، آمین آمین، اللہم صلی علی محمد والا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان

0: जिसने
1: सामीन इकराम ब्रॉड फॉर एशियन रेडियो 14:13 AM की ये नशिस्त जो है अभी जो यौम आशूरा के हवाले से और जुमा करीम के हवाले से पेश की गई ये इख्तिताम पज़ीर है। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना है। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, मैं तमाम प्रोग्राम में कहना चाहती थी एंड पे कि आप लोग जी बिल्कुल बहुत आपको पता है गर्मी है, ख्याल रखें, पानी पिए। बच्चों के हवाले से बिलखसूस के कुछ घरानों में मैंने खुद बजाते खुद देखा है कुछ फैमिलीज़ में कि बच्चों को बहुत गर्मी लगती है तो वो एकदम से आप उनको ठंडा शावर जो है ना वो कहती है। मैंने एक मोम भी उससे रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई तो जी मेरे बच्चों ने तो ठंडे पानी से जो है शावर लिया है, मैं हैरान। और आपने एक वो वाकया भी सुना ही होगा जो कि सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुई, वो एक फिल्म जो थी वो वीडियो के जिसमें दिखाया गया कि वो किसी ने वो बच्चा था कि उसने अस्तग़फ़िरुल्लाह वो ठंडे पानी में छलांग लगाई तो वो बाहर ही नहीं निकल सका कि एकदम से वो कोल्ड, उसको कहते हैं कि कोल्ड शॉक लगा है, गर्मी बहुत थी। तो बच्चे ऐसे करते हैं ना कि फुल गर्मी में वो जाके तो वो कह रहे हैं कि बच्चा बाहर ही नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को, हम सबके बच्चों को महफूज रखे, आमीन। और ये पैगाम जो है ये मैं बिलखसूस रेडियो के हवाले से फिर देना चाहती थी कि वीडियो जो वो देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह पाक सबके बच्चों को, हम सबके बच्चों को सलाम मत रखे, आमीन। और उनको भी सब्र जमील दे कि जिनके साथ ये सानिहा पेश आया, क्योंकि अब ये पैगाम पहुंचाना जो होता है एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे ऊपर जो एक जो होता है ये एक किस्म का फ़र्ज़ हो जाता है कि आगे पैगाम पहुंचाएं कि खुदारा बच्चों को समझाएं कि एकदम से कहीं भी वो पानी वाली जगह, वो तो वो कह रहे हैं कि पानी वाली किसी भी जगह के ऊपर आप जाते हैं, ठीक है, वो समटाइम्स बंदा अपने पाँव या हाथ वगैरह मुँह वो धो लेता, लेकिन एकदम से जंप इन कर जाना उसमें वाटर में, कोल्ड वाटर में, तो वो कोल्ड शॉक लगता है। और दूसरा ये कि घरों में भी बच्चों को इतना पानी जो है ना बिल्कुल मध्यम सा, जिसे कहते हैं ना कोसा कोसा हमारी जबान में ल्यूक वॉर्म वाटर, तो उससे आप जो है शावर बच्चों का एहतियात करें, रखें बिल्कुल कोल्ड वाटर से उनको शावर देना, ये ज़रा आपने सोचना है, इस बात को ख्याल रखना है। मद्देनज़र मेरा फ़र्ज़ बनता था इस प्रोग्राम की निस्बत से आपको मैं बताऊं कि ये जो इस तरह के सानहा से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे कि जिनके साथ हुए अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे, और अल्लाह पाक सबकी, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में, हम सबको हमारे बाल बच्चों को हिफ्ज़ो अमान में रखे, ऐसी नागहानी सूरत हाल से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे जिन्हों जिन्होंने सुना है ये पैगाम काइंडली आगे पहुंचाएं, सारी फैमिलीज़ को, बच्चों को समझाएं कि इतना एकदम से ये कोल्ड शॉक जो होता है इससे बचें। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। और ये जो है सलाम जो है मौला हुसैन की शान में हम सुनते हैं, समात फरमाते हैं।

0: में है, ईद में मनाया जाता है। यही तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया है जो इस्लाम की बका और इसकी जमानत बना। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिसने साबित किया कि ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। ये मसालिक और फिरका बंदियों की तकसीम का नहीं बल्कि हक के लिए सर उठा के चलने का दर्श देता है। जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह।
1: उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं।
0: कोई सुलेमान, कोई मेसम, कोई अबू ज़र निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो असकर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। जोश मली आबादी फरमाते हैं,
2: मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन।
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
0: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: कबूल कर लूं।
1: बिल्कुल,
0: ये कहकर आपने तलवार निकाली।
1: सही।
0: अब आपने कहा किसका नाम लिया, अपनी माँ और अपने बाप का।
1: बिल्कुल।
0: और वो बुजुर्ग जिनकी गोदों में परवरिश पाई, अपने नाना का। पाक हस्ती का दूध पिया, पाक गोद में परवरिश पाई और पाक मेरे आबा व अजदाद थे। तो आपने तो पूरी करबला जैसे अपने हाथों में उठाई और अपने माँ और बाप के कदमों पर ले जाकर ढेर कर दी। ये मेरे माँ और बाप की वजह से अच्छी करबला हुई।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक देखिए ये ट्रेंड है और ये फरमाबरदारी, ये एहसान मंदी, देखिए रूबियत माँ बाप करते हैं, रब अल्लाह है, रूबियत माँ बाप करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो 18 साल का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आज का हमारा 18 साल का बच्चा बड़ा जो है मैनाइल उसकी एटीट्यूड होता है, जो हमारा माहौल बन गया। उस बेटे ने बाप के मुंह से इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन सुना तो उसकी सवारी अपने वालिद की सवारी से पीछे पीछे चल रही थी। उसने घोड़े को थोड़ा सा आगे किया और वालिद की सवारी करीब लाए और जुमले सुने जनाब अली अकबर के। मैं कहती हूँ कुर्बान जाइए ऐसी औलाद पर और दुआ और तमन्ना करनी चाहिए परवरदिगार आलम की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, और जिस तरह आप अपने माँ बाप की औलाद थे हमारे बच्चों को वही रंग अता कर दे। उस बच्चे ने फरमाया कि बाबा खुदा आपको रंजो गम की सूरत न दिखाए, ये आपने इतने दर्द से इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा। तो बाप ने कहा कि अली अकबर थोड़ी देर के लिए सवारी पर मेरी आंख में नींद आई और मैंने देखा कि ख्वाब की कैफियत सी मुझ पर तारी हुई, मैंने देखा कि सवार मेरे करीब से गुजर रहा है जो कहता है कि लोग फासले तय कर रहे हैं और मौत उनके ताकुब में, और बेटा हमें मौत की खबर दी गई है। तो बेटे ने पूछा कि बाबा क्या हम हक पर नहीं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा। तो जनाब अली अकबर ने फौरन जवाब दिया, बाबा अगर हम हक पर हैं तो हमें इस बात का क्या खौफ है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर
1: मौत की तरफ चले जाएं।
0: आप ये देखिए कि ये कमिटमेंट है। उसके अलावा मोमिन की जिंदगी में
1: बिल्कुल
0: जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का, रोज और शब उठने और खाने पीने का और वक्त गुजारने का नाम नहीं है, इसका एक बहुत हाई आइडियल है और वो ये कि आप अपने नस्ब उल ऐन अपने मिशन स्टेटमेंट को अचीव करें, और उसके लिए अगर मौत भी उस राह में आती है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के मुंह से वो जुमला सुना जो आपके वालिद का जुमला था। जनाब अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाया करते थे कि जिस तरह बच्चा अपनी माँ के दूध से मोहब्बत करता है इस तरह मैं अपनी मौत से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने अपने बेटे जिसका नाम अली था तो उसके मुंह से जब ये जुमला सुना कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े, अगर हम हक पर रास्ते
1: हक पर अगर हैं तो,
0: आपने बेटे को दुआई खैर दी। आपने जिंदगी की दुआ नहीं दी, अपने बेटे को आपने खैर की दुआ दी। और फिर आप ये देखिए कि कमिटमेंट की लेवल और फिर ऑनर और डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, और जिस मकसद के लिए आप चले जिसे आप समाज
2: एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM।
3: सामीन, मुहर्रम नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत और उनके रुफका पर मैदान करबला में ढाए गए मजालिम और उस ज़िब अज़ीम जिसका जिक्र कलाम पाक में है की याद में मनाया जाता है। यही तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया है जो इस्लाम की बका और इसकी जमानत बना। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिसने साबित किया कि ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। ये मसालिक और फिरका बंदियों की तकसीम का नहीं बल्कि हक के लिए सर उठा के चलने का दर्स देता है। जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह।
4: उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं।
3: कोई सुलेमान, कोई मेसम, कोई अबू जर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। जोश मली आबादी फरमाते हैं,
5: आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गर्खे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन।
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257।
3: दुबई ज्वेलर्स। White कैबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414-2078।
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: ट्रेडिशन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर के हसीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bedfordasianradio.co.uk पर। ये हमारी मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशियात हैं। सुगवारान हुसैन नजरदारान हुसैन को बेडफोर्ड एशियन रेडियो का ये तोहफा।
1: सरदाद नदाद दस्त दर दस्त।

उठे 10 दिन तक जारी रहेंगी। मैं हूँ रिफत अब्बास, कबूल कीजिए मोहब्बत और अकीदत से लबरेज सलाम अपने तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में। आज भी रोशनी की ये खूबसूरत महफिल सजेगी, आप होंगे, हम होंगे, और फिर वो गम होगा जो हम मना रहे हैं। एक मरतबा फिर अपने तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, बच्चों और तमाम ही सामईन और नाजरीन की खिदमत में नाचीज रिफत अब्बास का मोहब्बत और अकीदत से लबरेज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगाज उसके नामे नामी से हो चुका है जो हम सबका रब है, खालिक़े कायनात है। रोशनी का आगाज हमेशा की तरह हम बारी ताला से करेंगे। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बारी ताला के बाद हम उनका तारुफ कराएंगे।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनिंगो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मेनिंगम सुपर स्टोर,
2: मेनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on
4: 1413 AM.
5: और दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी मुहर्रम अल हराम का खुसूसी प्रोग्राम। मैं हूँ रिफत अब्बास। आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी इस खूबसूरत रूह परवर और ईमान अफरोज महफिल में शिरकत की है। जो अहबाब हमारी बज़्म में तशरीफ़ ला चुके हैं उनके इस्माए ग्रामी कुछ यूँ हैं। रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, डॉक्टर माहरुख साहबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, जनाब चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर के सनती शहर से, और मोहम्मद वकास तशरीफ़ लाए हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से। इन तमाम अहबाब ने जिनके इस्माए ग्रामी मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। वक्त हुआ है बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने का।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। आज आप सब जानते हैं कि गर्मी शदीद है, यहाँ इस वक्त स्टूडियो में टेम्परेचर 29 सेंटीग्रेड है और मैंने दरवाज़ा खिड़की भी खोल रखी है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इंसान उबल रहा है। बहरहाल दुआ कीजिए कि मैं बारगाहे इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अत्थार और शुहदाए करबला के हुजूर, ये नजराने जो आप सोगवारान हुसैन अदादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से पहुँच रहे हैं, इन्हें पूरा कर पाऊँ। आज हमारे यहाँ मैं आपकी खिदमत में मरसिया मीर अनीस तहतु लफ्ज़ नहीं पेश कर पाऊँगा, एक तो गर्मी की शिद्दत की वजह से, दूसरा ये कि हमारे फ्लोर पर बराबर में ऑफिसेज हैं और वहाँ आज कोई ख़ास मीटिंग है और उसकी वजह से, क्योंकि मरसिया मीर अनीस आप सुन चुके हैं उसमें आवाज़ खासी बुलंद हुआ करती है, लेकिन हाँ हम खुश आमदीद कहेंगे अपने बहुत ही मोहतरम लिसनर नज़ीर अहमद साहब को, जो लिया पंजाब पाकिस्तान से अभी अभी आज की इस रुख परवर और ईमान अफरोज महफिल का हिस्सा बने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे मोहतरम मैनचेस्टर के सनती शहर से चौधरी रुखसार अहमद साहब हमारी बज़्म में मौजूद हैं और बारगाहे इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अत्थार और शहदाए करबला के हुजूर नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तकमील मारफत है मोहब्बत रसूल की, है बंदगी खुदा की इताअत रसूल की, और तस्कीन दिल है सरवरे कोरों मका की याद, सरमाए हयात है उल्फत अहले बैते रसूल की। और आइए आपका हदिया अहले बैत अत्थार और शहदाए करबला के हुजूर लेकर चलते हैं। चौधरी रुखसार अहमद साहब, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे और सेहत से रखे और अपने ही दुआ मान में रखे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी, मैं हूं रिफत अब्बास। आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। गर्मी बेइंतहा शदीद है, बतौर ख़ास स्टूडियो में इस वक्त टेम्परेचर 29 सेंटीग्रेड है और इसी वजह से हम आज मर्सिया तहतुल्लव मीर अनीस पेश नहीं कर पाएंगे। कमर्शियल की जानिब बढ़ते हैं और कमर्शियल के बाद डॉक्टर माहरुख साहबा, आपका हदिया नात बहुजूद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया है जो इस्लाम की बका और इसकी जमानत बना। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिसने साबित किया कि ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। ये मसालिक और फिरका बंदियों की तकसीम का नहीं बल्कि हक के लिए सर उठा के चलने का दर्स देता है। जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह।
2: उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं।
1: कोई सुलेमान, कोई मेसम, कोई अबू जर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो अस्कर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। जोश मली आबादी फरमाते हैं,
3: मुसलमान को प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौ बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन।
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3489, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2607। और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर?
1: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548 419 678।
6: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: शबीर की।
0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी माह मुहर्रमुल हराम का ये खुसूसी प्रोग्राम बेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर और हमारे वो अहबाब जो हमारे फेसबुक अगर आपका अकाउंट है तो हमारे पेज पर तशरीफ लाइए। मेरा पेज है RJ Rifat Abbas। ये उन अहबाब के लिए है जो नए हैं, पुराने तो हमारे हमराह मौजूद हैं अल्लाह ने सलामत रखे, अभी अभी हमारी बज में शामिल हुए हैं परदेसी मजी साहब और उन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सलाम और ढेरों दुआएं आपके लिए खुसूसी और आपके तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दें। आपने बारगाह इमाम आली मकाम अहले बैत अथार और शहदाए करबला के हुजूर एक नोहा पेश करने की सआदत हासिल करना चाहिए, यकीनन आप करेंगे। अभी तो हम चल रहे हैं अपनी मोहतरम डॉक्टर माहरुख साहिबा जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाती हैं और कहती हैं कि मेरा सलाम बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दें कि सलाम उस ज़ाते अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्रे दौरा पर, हज़ारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इमकां पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल आलमी बनकर, पयामे दोस्त बनकर, सादिकुल वादो अमी बनकर, सलाम उस पर जलाई शय शम इरफा जिसने सीनों में और किया हक के लिए बेताब सजदों को जबीनों में, सलाम उस ज़ाते अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, हज़ारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इमकां पर। आइए डॉक्टर साहब, आपकी आमद हमारे प्रोग्राम को हमेशा चार चांद लगाती है, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसके बाद हम लैया पंजाब पाकिस्तान जाएंगे जहां हमारे मोहतरम नज़ीर अहमद साहब बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब आमद का बहुत शुक्रिया।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane ब्रेडफोर्ड, BD95BR 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetland Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: यूके। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट दिलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही दिलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274 414 760.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on
4: 1413 AM.
5: और दोस्तों अभी आप ज़रीन ख्यालात सुन रहे थे अल्लामा नसीरुल इस्तहादी के. अब वक्त हुआ है बारगाह इमाम आली मकाम के हुजूर जनाब शकील साहब का खराज अकीदत पेश करने का. आइए बारगाह इमाम आली मकाम ऐसे बैत अतहारू और शहदाए करबला के हुजूर इस नजराने को लेकर चलते हैं. शकील भाई आमद का बहुत शुक्रिया.

0: 13 AM.
1: सामीन, मुहर्रम नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत और उनके रुफका पर मैदान करबला में ढाए गए मजालिम और उस जिबे अजीम जिसका जिक्र कलाम पाक में है की याद में मनाया जाता है। यही तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया है जो इस्लाम की बका और इसकी जमानत बना। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिसने साबित किया कि ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। ये मसालिक और फिरका बंदियों की तकसीम का नहीं बल्कि हक के लिए सर उठा के चलने का दस देता है। जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह।
2: उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं।
1: कोई सुलेमान, कोई मेसम, कोई अबू जर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो अस्कर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। जोश मली आबादी फरमाते हैं,
3: मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गर्खे नौ बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन।
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: असल सोने की जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
1: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेड फाउंडेशन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालिस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
4: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
7: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: हिदायत का सवाल शह ने रद्द कर दिया इस जुरअत इनकार के साथ, फिर किसी ने न किया आल से बैत का सवाल, शह ने रद्द कर दिया इस जुरअत इनकार के साथ। सूए अकबर नजर उठती है तो दिल कहता है, सूए अकबर नजर उठती है तो दिल कहता है, करबला आए हैं शेह अहमद मुख्तार के साथ, करबला आए हैं शेह अहमद मुख्तार के साथ। सिर्फ एक मौजे तबस्सुम है मुकम्मल तकरीर, सिर्फ एक मौजे तबस्सुम है मुकम्मल तकरीर, बेजबां आया है किस कुव्वते गुफ्तार के साथ।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
0: सिर्फ एक मौजे तबस्सुम है मुकम्मल तकरीर, बेजबां आया है किस कुव्वते गुफ्तार के साथ।
1: वाह वाह वाह,
0: नसीब भाई शेर पेश कर रहा हूँ कि बादे मक्तल भी हैं इस बात पर नीज़े शाहिद, बादे मक्तल भी हैं इस बात पर नीज़े शाहिद, तन से सर कट के भी लश्कर रहा सालार के साथ।
1: क्या कहने,
0: बादे मक्तल भी हैं इस बात पर नीज़े शाहिद,
1: क्या कहने,
0: तन से सर कट के भी लश्कर रहा सालार के साथ। अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर, अलकमा देख
1: इसे
0: कहते हैं सोहबत का असर, घोड़ा प्यासा निकल आया है अलमदार के साथ। अलकमा देख इसे कहते हैं सोहबत का असर, घोड़ा प्यासा निकल आया है अलमदार के साथ। यूं रहे हक में 72 ने अजल को देखा, यूं रहे हक में 72 ने अजल को देखा, जैसे औलाद को माँ देखती है प्यार के साथ। यूं रहे हक में 72 ने अजल को देखा, जैसे औलाद को माँ देखती है प्यार के साथ। नहर पर हजरत अब्बास जरी को कौसर, नहर पर हजरत अब्बास जरी को कौसर, नींद तो आई मगर ताले बेदार के साथ,
1: ताले बेदार के साथ।
0: नहर पर हजरत अब्बास जरी को कौसर, नींद तो आई मगर ताले बेदार के साथ। सिर्फ एक मौजे तबस्सुम है मुकम्मल तकरीर,
1: क्या शेर निकाला है,
0: सिर्फ एक मौजे तबस्सुम है मुकम्मल तकरीर, बेजबां आया है किस कुव्वते गुफ्तार के साथ।
1: वाह वाह वाह वाह, ये थे जनाब कौसर नकवी, और अब तशरीफ लाते हैं जनाब अंसर आजमी। जनाब अंसर आजमी,
2: गुरबन के मेरा खामा किरतास पर चला है, राह सुखन में सिमटा सदियों का फासला है।
1: वाह,
2: अश्कों की रोशनाई लेकर सलाम लिखो, अश्कों की रोशनाई लेकर सलाम लिखो, तमहीदे बंदगी है तजदीदे करबला है।
1: क्या कहने,
2: तमहीदे बंदगी है,
1: फिर पढ़िए,
2: अश्कों की रोशनाई लेकर सलाम लिखो, तमहीदे बंदगी है तजदीदे करबला है। जुल्मत कदे से जिसको आना हो रोशनी में, जुल्मत कदे से जिसको आना हो रोशनी में, एक शब के रास्ते पर हुर बन के सोचता है, एक शब के रास्ते पर हुर बन के सोचता है। आ जाए जो भी चाहे सुनकर सदाए,
3: आ जाए एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतरामे मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: और फरात जो तेरे दामन में प्यास से तड़पा, फरात जो तेरे दामन में प्यास से तड़पा, यकीन है कि वो दुनिया में मोहतरम होगा। फरात जो तेरे दामन में प्यास से तड़पा, यकीन है कि वो दुनिया में मोहतरम होगा। और रहेगा फिर भी जबां पर वो हर्फ़े हक आखिर, रहेगा फिर भी जबां पर वो हर्फ़े हक आखिर, बदन पे चोट पड़े या के सर कलम होगा। रहेगा फिर भी जबां पर वो हर्फ़े हक आखिर, बदन पे चोट पड़े या के सर कलम होगा। और नजीर कोई नहीं है न कोई सानी है, नजीर कोई नहीं है न कोई सानी है, हुसैन तुझ सा जमाने में कोई कम होगा। नजीर कोई नहीं है न कोई सानी है, हुसैन तुझ सा जमाने में कोई कम होगा। और शेर है, लहू वही के जो दश्ते करबला में बहा, लहू वही है कि जो दश्ते करबला में बहा, उसी की लहर से मुर्दा दिलों में दम होगा। लहू वही है कि जो दश्ते करबला में बहा, उसी की लहर से मुर्दा दिलों में दम होगा। और यजीद और भी वहशत की इंतहा कर ले, यजीद और भी वहशत की इंतहा कर ले, तने हुसैन पे वो सर कहाँ के खम होगा। यजीद और भी वहशत की इंतहा कर ले, तने हुसैन पे वो सर कहाँ के खम होगा। और तुम्हारे चाहने वाले अगर हो एक यहाँ, तुम्हारे चाहने वाले अगर हो एक यहाँ, तो फासला भी कयासी मजीद कम होगा। तुम्हारे चाहने वाले अगर हो कम यहाँ, तो फासला भी कयासी मजीद कम होगा। हुर्रियतों का नया बाब जब रकम होगा, बुलंद सबसे जहां में तेरा अलम होगा।
1: ये थे जनाब यूनुस कयासी, और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं और अपना नजराना अकीदत पेश करें। जनाब डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम।
2: इमाम आली मकाम के हजूर नजराने सलाम। इमाम वक्त है, फितरत का राजदां है हुसैन। इमाम वक्त है, फितरत का राजदां है हुसैन। फलक पे जैसे सितारों की कहकशां है हुसैन, फलक पे जैसे सितारों की कहकशां है हुसैन। दयारे कर्ब व बला को वकार जिससे मिला, दयारे कर्ब व बला को वकार जिससे मिला, दयारे कर्ब व बला को वकार जिससे मिला, एक ऐसी जुर्रत व अजमत की दास्तां है हुसैन। एक ऐसी जुर्रत व अजमत की दास्तां है हुसैन। और अजीब काफिला है सरफरोश लोगों का, अजीब काफिला है सरफरोश लोगों का। सो क्यों ना हो कि वहां मीरे कारवां है हुसैन।
3: अजीब काफिला है। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
7: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 078।

चाहिए एक और पत्थर मारन लगी है। फिजा दावाज है सिलमा तू पत्थर न मारे। सिलमा दावाज है दाई तू मैनु किवें जान दी है। फिजा दी कूक निकली है आवाज आंदा है विच घर खातून दे आए सिलमा वो मेहमान तू कई दी रही है तेकू।

0: वाले।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

अच्छा इमाम ने बड़ी मुश्किल नाल सैयद आदि दी जोड़ी नु इजाजत दी है जोड़ी लड़दी लड़दी तीन मील ते आ जानी है जल्ले जोड़ी जानी इमाम दा आवाज है गाली आवाज है जी सरदार आवाज है ओ मेरा जलालिया वाला वीर वन मेरे भणियां दियां लाशा गिनना गाली लड़दा होया गाली ने आके जोड़ी दियां लाशा चाहियां आके खैमा दे दरमियान समा छोड़ियां सारे पर्दादार आ गए फिजा हत बल क्या दी हुसैन सारिया बीबियां मौजूद जोड़ी दी अमड़ी नहीं आई इमाम वल के देखे भय नजर नहीं आई इमाम टुर दियो भैर दे खैमे चावन क्या दे किन जनाबे ज़ैनब आलिया मुसल्ले ते बह के अलहमदी तस्बी पई पढ़ दी है इमाम ने आके भैर दे चिट्टे वाला ते हाथ रखा है आवाज़ आओ मेरी उजड़ी भैन बछड़े आ गए नी बछड़ा दिया लाशा ते वाल खोल

0: कमल दल ते खत लिख के बीमार दमन पर जा छोड़े।
1: आवाज में बाबा अकबर कुसेरे करण पवे से, बाबा अकबर दी जंग करण चढ़े से, बाबा ए तरसा मेरिया फुफिया अकबर नु मेहंदी कढ़न ला से। भैया दादा जिले आवाज आए हुसैन ने क्या
0: जानी जा

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: बेसिक पैरामीटर क्या है? तकवा, यही है ना बुनियादी, यही नुकता है ना कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह इत्काकुम, तुम अमीर हो गरीब हो काले हो गोरे हो, अगर तुम मुत्तकी हो तो तुम सबसे अच्छे हो। तो चाहे वो जनाब मुस्लिम हो, जनाब या कैस बिन मसर सैदादी हूँ, या अब्दुल्ला इब्न यक्तर हूँ, या उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला के अंदर वारिद होने वाले शोदा हूँ, या उनके बाद रह जाने वाले असीर हूँ, किसी ने भी इस बेसिक पैरामीटर को फ्लाउट नहीं किया। किसी का कंडक्ट जो है तकवा के खिलाफ नहीं है। यानी मकरूज वो हुए, कत्ल वो हुए, जख्मी वो हुए, असीर वो हुए, बाजारों और दरबारों में वो घसीटे गए, लाशों पर उनकी घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन कहीं पर भी उनका तकवा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, परहेजगारी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, सच्चाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, कंडक्ट और इंसान का ऑनर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ।
1: हम तकवा के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और उनके किरदार के ऊपर, वो साथी जो वहां पर मौजूद थे और इस तहरीक के साथ मुंसलिक थे। जी शर्मानो जी बताइए।
0: थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर बेसिक प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो फिर किसी भी तहरीक में कोई जान नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो करबला का बेसिक प्रिंसिपल जो था वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स में से, और इस्लाम का बुनियादी जो इंसान के किरदार से जिस प्रिंसिपल का ताल्लुक है वो तकवा है।
1: सही।
0: इसी वजह से किसी भी उस तहरीक में शामिल किसी भी फर्द पर कोई आप फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते कि उसके किरदार में वहां पर झोल पैदा हो गया जिसकी वजह से इमाम हुसैन इस्लाम की इस तहरीक जो है उस पर ये हमें एक ग्रे एरिया नजर आता है। इस तहरीक का कोई ग्रे एरिया नहीं है,
1: नहीं,
0: और 1500 साल से आप देखिए कि किसी ने दोस्ती की नजर से देखा, किसी ने मोहब्बत की नजर से देखा, किसी ने नुक्स निकालने की नजर से देखा, किसी ने नापसंदीदगी की नजर से देखा, सारी नजरों ने इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं देख सके। और यही इस ये उन आप देखिए इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहें ना आप हम अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में अपने नौजवानों से मुखातिब अगर हों तो ऐसा ह्यूमन रिसोर्स तो हमने कहीं पर भी नहीं,
1: नहीं देखा
0: कि ऐसा आप अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके लाए कि जिस पर आप आजाद छोड़ दें, तन्हा छोड़ दें, फिर भी आपको पूरा यकीन है कि उसने जो करना है वो ऐने तकवा होगा, ऐने इस्लाम होगा, ऐने अदल होगा, ऐने नबूवत के उस रोशनी के अंदर ही उसका किरदार रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। आप ये देखिए कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कासिद रवाना किए अब्दुल्ला इब्न यक्तर और कैस बिन मसर सैदादी कूफे की तरफ, जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आ चुकी थी और ये रास्ते में थे दोनों, तो कैस बिन मसर सैदादी कादसिया के मकाम पर गिरफ्तार हो गए इब्न ज़ियाद की फौजों के हाथों, और आपके हाथ पास एक खत था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उस खत में आपने चंद अपने दोस्तों के नाम वो खत था। अब जब आप गिरफ्तार हुए और आपकी जामा तलाशी हुई तो खत नेचुरली वो हाथ से निकलता और फिर उन लोगों के नाम मंजर पर आ जाते।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: वो उनके दोस्त थे
0: जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त थे या जिनके नाम पर वो खत था, वो जामा तलाशी में वो खत तक पहुंचने से पहले कैस बिन मसर सैदादी ने अपने लिबास में से वो खत निकाला और आपने जल्दी जल्दी वो खत खाकर निकल लिया।
1: सही।
0: अब आप ये ना समझिए कि आज के दौर का कागज और उस दौर का कागज ये सॉफ्ट पेपर नहीं है, न मालूम छाल पे लिखा हुआ था, न मालूम किस चीज पे लिखा हुआ था, ये आज के जमाने का रिफाइंड पेपर तो नहीं था। जिस चीज पे वो लिखा हुआ था कैस बिन मसर सैदादी की आप ये पर्सनल इंटेग्रिटी देखिए और अपने लीडर के साथ कमिटमेंट देखिए। देखिए कमिटमेंट की बात है, आप अपने लीडर को अपने तहरीक के अंदर डिजर्ट कर दें, उसे आप छोड़कर भाग खड़े हो जाएं। बड़ी बड़ी तहरीकें इसलिए नाकाम हो गई कि जो लीडर थे उनके पीछे जो मजमा था वो भाग गया।
1: बिल्कुल ऐसा ही
0: कैस बिन मसर सैदादी के सामने मौत थी, उन्होंने वो खत खा लिया ताकि मैं तो मारा जाऊं लेकिन वो चार जिनके नाम पर वो खत आया है वो आश्कार ना हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: वो ह्यूमन रिसोर्स इमाम हुसैन इस्लाम का वो बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे। और फिर कैस बिन मसर सैदादी को कत्ल कर दिया गया। अच्छा, कत्ल करने से पहले क्या कहा इब्न ज़ियाद ने कि चलो मेंबर पर और कूफे के अंदर लोगों से मुखातिब करके कहो कि वो धोखा करने आ रहे हैं, झूठ का सारा उन्होंने तुम्हारे साथ ये जितनी गुफ्तगू है झूठी है और वो एक डिसीट और डिसेप्शन। नहीं, कैस बिन मसर सैदादी मेंबर पर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि इससे बड़ा मजमा तो कहीं नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन इससे बेहतर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं कासिद हुसैन इब्न अली हूं और मैं उनका पैगाम तुम्हारी तरफ लाया हूं और वो तुम्हारे बुलाने पर पहुंच रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: खड़े हो जाओ, जालिमों को हटाओ और अपने इज्जत और आबरू का तहफ्फुज़ करो, इसलिए इमाम हुसैन चले और तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी इमदाद करो। ये कुव्वत फैसला ईमान से पैदा होती है, तकवा से पैदा होती है, पर्सनल इंटेग्रिटी से पैदा होती है। और फिर आप ये देखिए जिस वक्त इमाम हुसैन इस्लाम करबला की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सब बुजुर्ग या मिडिल एजड या बूढ़े लोगों के अंदर ये तकबा और ईमान और ये कमिटमेंट थी और उनके अंदर ये अपने ऑनर ह्यूमन ऑनर का एहसास था। आप कसरे बनी मकातिल की मंजिल पर पहुंचे, आपको थोड़ी सी घोड़े पर आप सवार थे और सवारी चल रही थी, आपको थोड़ी देर के लिए नींद आई, आप थोड़ी सी कुनूदगी के आलम है एकदम, फिर आपने उस गुनूदगी से आप बाहर निकले और आपने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तीन बार आपने जुमला दोहराया। आपका बेटा जनाब अली अकबर जिनकी उम्र उस वक्त फकत 18 साल है, आप देखिए 18 साल का बच्चा हमारे यहाँ क्या होता है, 10वीं 12वीं जमात के अंदर होता है, ओ लेवल कर रहा होता है, उसको हम बहुत ही चाइल्डिश तरीके से

0: औरतों से ट्रीट करते हैं।
1: सही।
0: उस बेटे ने अपनी सवारी को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे करबला के ताल्लुक से हमें बहुत समझना चाहिए कि वालिदैन की ताबेदारी, अल्लाह अकबर, और उनकी इज्जत और एहतराम जो करबला ने हमें सिखाई,
1: जो आज के बच्चों को सीखने की जरूरत।
0: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत जब आप तन्हा रह गए और आप मैदान की तरफ निकले तो आपने कहा कि मैंने पाक हस्ती का दूध पिया और पाक गोद में परवरिश पाई।
1: बेशक।
0: और पाक मेरे आबा अजदाद थे, उनमें से कोई भी इस बात को पर नहीं राजी होगा कि मैं इज्जत की मौत के लिए जिल्लत की जिंदगी को कबूल कर लूं।
1: बिल्कुल।
0: ये कहकर आपने तलवार निकाली।
1: सही।
0: अब आपने कहा किसका नाम लिया, अपनी माँ और अपने बाप का।
1: बिल्कुल।
0: और वो बुजुर्ग जिनकी गोदों में परवरिश पाई, अपने नाना का, पाक हस्ती का दूध पिया, पाक गोद में परवरिश पाई और पाक मेरे आबा अजदाद थे। तो आपने तो पूरी करबला जिसे अपने हाथों में उठाई और अपने माँ और बाप के कदमों पर ले जाकर ढेर कर दी। तो ये मेरे माँ और बाप की विरासत आज करबला हुई।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक देखिए ये ट्रेंड है और ये फरमाबरदारी, ये एहसान मंदी, देखिए रूबियत माँ बाप करते हैं, रब अल्लाह है, रूबियत माँ बाप करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो 18 साल का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आज का हमारा 18 साल का बच्चा बड़ा जो है मैनाइल उसकी एटीट्यूड होता है, जो हमारा माहौल बन गया। उस बेटे ने बाप के मुंह से इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन सुना तो उसकी सवारी अपने वालिद की सवारी से पीछे पीछे चल रही थी। उसने घोड़े को थोड़ा सा आगे किया और वालिद की सवारी करीब लाए और जुमले सुने जनाब अली अकबर के। मैं कहती हूँ कुर्बान जाइए ऐसी औलाद पर और दुआ और तमन्ना करनी चाहिए परवरदिगार आलम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, और जिस तरह आप अपने माँ बाप की औलाद थे हमारे बच्चों को वही रंग अता कर दे। उस बच्चे ने फरमाया कि बाबा खुदा आपको रंजो गम की सूरत न दिखाए, ये आपने इतने दर्द से इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा। तो बाप ने कहा कि अली अकबर थोड़ी देर के लिए सवारी पर मेरी आंख में नींद आई और मैंने देखा कि ख्वाब की कैफियत सी मुझ पर तारी हुई, मैंने देखा कि सवार मेरे करीब से गुजर रहा है जो कहता है कि लोग फासले तय कर रहे हैं और मौत उनके ताकुब में, और बेटा हमें मौत की खबर दी गई है। तो बेटे ने पूछा कि बाबा क्या हम हक पर नहीं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा। तो जनाब अली अकबर ने फौरन जवाब दिया, बाबा अगर हम हक पर हैं तो हमें इस बात का क्या खौफ है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर
1: मौत की तरफ चले जाएं।
0: आप ये देखिए कि ये कमिटमेंट है, उसके अलावा मोमिन की जिंदगी में
1: बिल्कुल
0: जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का, रोज और शब उठने और खाने पीने का और वक्त गुजारने का नाम नहीं है, इसका एक बहुत हाई आइडियल है और वो ये कि आप अपने नस्बुलैन अपने मिशन स्टेटमेंट को अचीव करें, और उसके लिए अगर मौत भी उस राह में आती है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के मुंह से वो जुमला सुना जो आपके वालिद का जुमला था। जनाब अमीर मोमिन इरशाद फरमाया करते थे कि जिस तरह बच्चा अपनी माँ के दूध से मोहब्बत करता है, इस तरह मैं अपनी मौत से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने अपने बेटे जिसका नाम अली था तो उसके मुंह से जब ये जुमला सुना कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े, अगर हम हक पर रास्ते
1: हक पर अगर हैं
0: तो आपने बेटे को दुआ खैर दी, आपने जिंदगी की दुआ नहीं दी, अपने बेटे को आपने खैर की दुआ दी। और फिर आपने देखिए कि कमिटमेंट की लेवल और फिर ऑनर और डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, और जिस मकसद के लिए आप चले, जैसे आप समाज अदल इंसाफ और दूसरे इंसान जो उठकर खड़े नहीं हो सकते, जो बोल नहीं सकते, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, जब आप उनके लिए उठकर खड़े होते हैं तो फिर आपको किसी किस्म के झोल नहीं होता आपके कैरेक्टर के अंदर। फिर आप ये देखिए कि खानदान बनी हाशिम ने वो मिसालें पेश की जो हमारे आज के
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
4: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
7: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 07 8।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: दे।
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627.
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: हवाले से आप क्या हमारे देखने वालों को क्या गाइडेंस देंगी, आज जो मैसेज है उसको क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या क्या सबक लेना चाहिए और किस तरह से इस मुश्किल वक्त में हमें आगे बढ़ना चाहिए?
1: देखिए, करबला की बहुत बड़ी खूबी है, इस पूरी तहरीक की बहुत बड़ी खूबी है कि ये नुक्स से पाक है। इसकी वजह यह है कि ये जब तहरीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाई तो ये एक तरह से इस्लाम को दोबारा जिंदा करने की
0: रिवाइवल हुआ ना इस्लाम का।
1: तो आप किसी भी कम समझ, कम अकल और दुनिया से मोहब्बत करने वाले आदमी को अपने साथ इस तहरीक में शामिल नहीं कर सकते थे। आप ये देखिए कि जब लोग दुनिया की तहरीकें लेकर चलते हैं तो आप लोगों को बहुत तरीके से मोटिवेट करते हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ये फायदा पहुंचेगा, इस तरह कोई
0: दुनियावी फायदों का लालच देते हैं। बिल्कुल सही,
1: आपने डे वन से यही कहा कि मेरा मकसद अदालत, इंसाफ, समाजी इंसाफ, इंसान की ऑनर को बचाना है।
0: सही,
1: और हर जगह आपने लफ्ज इंसान इस्तेमाल किया।
0: सही,
1: इंसान के ऑनर को बचाना है, यानी कि मुसलमान के ऑनर को बचाना है या खास तबका फिक्र के ऑनर को, नहीं, इंसान। देखिए, कुरान का भी जो बुनियादी खिताब है ना, वो इंसान से है,
0: इंसान से।
1: और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस इंसान की इज्जत आबरू को सेफ गार्ड करने के लिए, करवाने के लिए। तो आपने हर मौके पर कहा कि मेरा मोटिव जो है वो इस राह में मेरी जान भी जा सकती है, यानी कहीं पर आपने लोगों को डिसेप्शन, किसी धोखे में नहीं रखा। या तो जो साथ आने वाले थे वो आए, और जो नहीं आने वाले थे उन्होंने जब देखा कि तो मौत का रास्ता है, वो छटते चले गए। तो ये वो लोग थे जो तरबियत याफ्ता थे। इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो खुद खानदान नबूवत से जिनका ताल्लुक था इस तहरीक में, या वो लोग हैं जो जनाब रसूल खुदा और जनाब अमीर मोमिन अली मुर्तजा के सहाबियों की औलादें।
0: बिल्कुल सही।
1: लिहाजा आपने जो एक कम अकल, कम समझ या थोड़े से कमिटमेंट में कमजोर लोगों पर तकिया करके आपने इस तहरीक को नहीं चलाया। और आप ये देखिए कि कहीं पर भी आपको छोटी सी भी डिसेप्शन नजर नहीं आती, चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हों या आप मौजूद ना हों। जब आपने करबला की तरफ रुख किया तो आपने पहले हरावल दस्ते के तौर पर अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेजा। आप ये देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में मुस्लिम ऑल इन ऑल हैं, और चूंकि आपकी सफारत के ओहदे पर हैं तो जो काम जनाब मुस्लिम करेंगे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम काउंट होगा। अब इब्न ज़ियाद जनाब मुस्लिम को स्कोल्ड करता है या उनको बेइज्जती करके कहता है कि तुम असला जमा कर रहे थे, तुम पैसों के ढेर लगा रहे थे ताकि तुम फितना फैलाओ और हुसैन इब्न अली के लिए ताकत इकट्ठी करो। जब हजरत मुस्लिम बिल्कुल जख्मी होकर उसके सामने गिरफ्तार करके लाए गए तो वो सारी तकरीर जनाब मुस्लिम की, और आपने उसकी सारी शरारत को डिफाई किया, वो बातें अलग। उसके बाद आपने कहा मेरी चंद वसीयतें, और आपने उमर साथ को, चूंकि वो उसका ताल्लुक मदीने से था, उसे करीब बुलाकर कहा कि मैं 700 दिरहम का मकरूज हूं इस शहर में, मेरी जरा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर दिया। तो आप ये देखिए कि
0: कैरेक्टर
1: के, अगर दूसरे लोग, अगर हम दुनिया की तहरीकों के साथ इसका मवाजना करें तो लोग पहले क्या सोचते हैं कि माली वसाइल को इकट्ठा करें, लोगों को बेवकूफ बनाएं, कुछ असला जमा हो जाए, कुछ और रिसोर्सेज जमा हो जाएं, फिर नित नई बातें सामने आती हैं।
0: तो यहाँ पे पैगाम ये आता है, इनके जो, इनका जो किरदार रहा जनाब मुस्लिम बिन नकीर अलैहिस्सलाम का जो किरदार, कुछ भी हो जाए आपका कैरेक्टर, वो जो सच्चाई और ईमानदारी है वो किस, और कमिटमेंट किस कदर है उस इंस्टीट्यूशन के साथ। अच्छा, अभी आपने एक बात कही जिसमें आपने कहा कि राइट्स, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात हुई, उसके अलावा जबर नहीं है इस्लाम में।
1: बिल्कुल नहीं,
0: इस्लाम जबर का पैगाम नहीं देता। वो चाहे हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, उसके बाद जो आइम्मा मासूमीन की जिंदगी में देखें, और खास सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो मुझे नजर आती है वो ये कि जब शब आशूर सारे साथी बैठे हुए थे तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अब भी कोई जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ जन्नत की। उस हवाले से हम चाहेंगे कि उसके बावजूद उन साथियों की कमिटमेंट कि वहां पर रहे, उस हवाले से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर एलैबोरेट।
1: देखिए, हमारे यहाँ हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस्लाम के कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। करबला की तहरीक में बुनियादी नुकता यही है कि किसी भी साथी ने बेसिक पैरामीटर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बेसिक पैरामीटर क्या है? तकवा, यही है ना बुनियादी, यही नुकता है ना कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह इत्काकुम, तुम अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, अगर तुम मुत्तकी हो तो तुम सबसे अच्छे। तो चाहे वो जनाब मुस्लिम हो, जनाब या कैस बिन मसर सैदादी हूँ, या अब्दुल्ला इब्न यक्तर हूँ, या उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला के अंदर वारिद होने वाले शहदा हूँ, या उनके बाद रह जाने वाले असीर हूँ, किसी ने भी इस बेसिक पैरामीटर को फ्लाउट नहीं किया। किसी का कंडक्ट जो है तकवा के खिलाफ नहीं है। यानी मकरूज वो हुए, कत्ल वो हुए, जख्मी वो हुए, असीर वो हुए, बाजारों और दरबारों में वो घसीटे गए, लाशों पर उनके घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन कहीं पर भी उनका तकवा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, परहेजगारी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, सच्चाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, कंडक्ट और इंसान का ऑनर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ।
0: हम तकवा के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और उनके किरदार के ऊपर, वो साथी जो वहाँ पर मौजूद थे और इस तहरीक के साथ मुंसलिक थे। जी शर्मानो जी बताइए।
1: थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर बेसिक प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो फिर किसी भी तहरीक में कोई जान नहीं रहती।

0: बिल्कुल
1: तो
0: सही,
1: कर्बला का बेसिक प्रिंसिपल जो था वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स में से, और इस्लाम का बुनियादी जो इंसान के किरदार से जिस प्रिंसिपल का ताल्लुक है वो तकवा है।
0: सही,
1: इसी वजह से किसी भी उस तहरीक में शामिल किसी भी फर्द पर कोई आप फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते कि उसके किरदार में वहां पर झोल पैदा हो गया जिसकी वजह से इमाम हुसैन इस्लाम की इस तहरीक जो है उस पर ये हमें एक ग्रे एरिया नजर आता है। इस तहरीक का कोई ग्रे एरिया नहीं है,
0: नहीं है बिल्कुल
1: और
0: नहीं।
1: 1500 साल से आप देखिए कि किसी ने दोस्ती की नजर से देखा, किसी ने मोहब्बत की नजर से देखा, किसी ने नुक्स निकालने की नजर से देखा, किसी ने नापसंदीदगी की नजर से देखा, सारी नजरों ने इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं देख सके। और यही इस ये उन आप देखिए इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहें ना आप हम अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में अपने नौजवानों से मुखातिब अगर हों तो ऐसा ह्यूमन रिसोर्स तो हमने कहीं पर भी नहीं,
0: नहीं
1: देखा
0: देखा।
1: कि ऐसा आप अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके लाए कि जिस पर आप आजाद छोड़ दें, तन्हा छोड़ दें, फिर भी आपको पूरा यकीन है कि उसने जो करना है वो ऐने तकवा होगा, ऐने इस्लाम होगा, ऐने अदल होगा, ऐने नबुवत के उस रोशनी के अंदर ही उसका किरदार रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। आप ये देखिए कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कासिद रवाना किए अब्दुल्ला इब्न यख्तर कैस बिन मसर सैदादी कूफे की तरफ, जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आ चुकी थी और ये रास्ते में थे दोनों, तो कैस बिन मसर सैदादी कादसिया के मकाम पर गिरफ्तार हो गए इब्न ज़ियाद की फौजों के हाथों, और आपके हाथ पास एक खत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उस खत में आपने चंद
2: दोस्तों के नाम।

0: दे
1: कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे मनकबत सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 07 8।

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने। बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: Listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
6: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.